देवी प्रत्येवी दीपुन चमक कु देवी हरी मी आरो मोरु पिर कापु खैबुना निर कापस कहु जाना ampun nyeratu.